म हरिप्रसाद मैनाली पत्नी सिलवती र पुत्र गुमला माली कहाँसी मुख प्रेमी मित्र दाजु भाई सजिला माता पिता सन्मुख नारायण।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: निंदा छैन नाङ्गाको याद छैन भोकको, निंदा छैन नाङ्गाको याद छैन भोकको, इच्छा मलाई लागेर स्वर्ग लोकको।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: चौकी पछाडि भीमेश्वर कोल्ड स्टोर सँगै।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: आज प्यार की हो डील।
1: डील बोले तो
2: हाट हाट
3: हवा यार, सौदा सौदा।
1: ओहो
0: दोनों डील कर
1: टाइट, वेरी टाइट।